भाई जब उजाता मत तमा उतना जनतो मगर की उनका चेन पूरा ही एक्सो एक्सो टाने बुझना किजो में ओहो लियल छेरे दिल दिया फील करें 90.4

पता चल गया कौन सा नशा करता है, वो नए नए फूलों से मजा करता है। ये कैसा बंदा भेजा तूने दुनिया में खुदा, ऐसी गलती थोड़ी ना खुदा करता है।